कहते थे सीजन माता पता था दच्छा था कुरने चर के ने दे दा बिल्कुल गोए ने रजाकी की खा जगह चिता खल कुडिर जैत पर मेहनत सर साथे ले भी ब्याह से कम ने देखा दाता सुबह और तो सवाई माल लोग पता नहीं था वो चुंगी दिल तक और तो मुंगा खपल जुबान के अगतू ही मरगई नहीं भी कागे कागे और तवायु कागे ब्याह दा गीना अगर साथल का नाम और ब्याह से कम ने दा से कले उड़ी के भी पटी भी खुआ के कहना ना अगर अक्सर स्पीकर जी या गिदड़ान वगैरह गर्जी का ना लुमड़ी वगैरह चिकम दे गर्जी अगदा चरगान भी अचर तपरी दी और ब्याह से कम ने दा गीना अगर साथल अगर महफूज साथल आये हाय हाय दड़ीर जात मेहनत गोड़ी खा तदी ने ता सुने खबर मत पता था

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास। हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सॉप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं, 0313-91-27-273।
3: Your music, your request.
4: This is Radio Station, Radio Aman.
5: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज़ है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: ओ जमाना।

0: 88.4 टांग रेडियो अमन जीत की लगन।
1: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल ले। अवेला जी सुनत अमल ले।
2: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ी दली ढेर गर्जिदली कड़ी दली यो
1: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ मायूसके गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और हकीम मौलाना नूरुल हुदा साहब ना पल इलाज तरला सकवले शे
2: और दोनों मालूमातों दे पारा पदगल नंबर कॉल कवले शे
1: 0319 55 23 404